गुरमुख परगट हर हर नाम रहाओ। गुप्ता नाम वरतै विच कल युग घट घट हर भरपूर रहया, घट घट हर भरपूर रहया।

अर्थ कहै साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नान कहै मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ।

नाम उर तहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नह।

मनोरथ कोए ना पूरे ओ, चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है न।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰਿਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंध्यार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कौ फुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अघ पुंज त्रंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न

के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी

जाए। सतगुर पुरख हर ध्यायदा, सतसंगत सतगुर पहाए, सतसंगत सतगुर सेम दे, हर मेले गुर मेलाए। एहो भौजल।

तेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गावी

गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक देव जाई सबना जिया।

मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है।

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालकान कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिखती कहना अंत अंत ना करने दे।

ना अंत, अंत ना देखन सुन ना अंत, अंत ना जापे क्या मन मंत, अंत ना जापे कीता आकार, अंत ना जापे पारावार, अंत कारण के ते बिलला है, ताके अंत ना पाए जाहे, एहो अंत ना जाने को।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अप

भासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भासी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरासाद संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक राह पत पवड़िया

जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिये रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते दे

ओहे मरे न ठागे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए, सत खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड।

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत सिताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आईया बुरे आईया, वाचे तर्म हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, सोदर राग आ

सारे गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुधनो साध विचारे गावन सुधनो जति सती संतोखी गावन सुधनो वीर करारे गावन सुधनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन सुधनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन सुधनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन सुधनो जोध महाबल सूरा गावन सुधनो खानी चारे गावन सुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पाता ओसा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब त्यों मेल।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरैनारे, मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पाव

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया वा

वाले रोवन वाले जेतड़े सब बनने पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तत आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला। अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार। सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान। जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान। रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास तामुख हो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण

पास अपर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणता।

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए नानक सच्चा।

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ। आप सुजान ना कुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मन मुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर। जे तन कंत न भावई ता सब अडंबर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द न पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक

सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू भय पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे।

निर्मल मेला ना किया शब्द रते पत होए। इव मन साथ संतोखिया नदर करे तुस माहे

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाये जा हर नव से मन माहे गुर मिलिए सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सा।

तो प्रभ सेज पतार चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशिया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाइए रिद मानक मोल।

दुर्मुख कूड न पावै, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है दया।

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

कैसी वस्त विसाई है, जैसी निभ नाल अजैसा सुजान है, लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर।

ते जात ना तत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया। पित सुतो सगल काल त्र माता, तेरे हो है ना अंत सखाया। रहाओ बिछय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याय। जप तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसै मद आश्रमाय। बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार में अपरंपरो चीने, कह नानक इव एक तार है। श्री राग में ला पहला सर की जा,

आओ ऐब तन चुकड़ो इन मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साची नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे छह सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुकम सोई परवा।

आए। सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पिलाए।

मान अंतर हर रस लग रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार के हर राख्या उधार हौ तिन के बलिहारने जिना नामे लगा प्यार सोई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मोह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेख कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावी मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाए हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ओ ना तिल ना तमाए जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पढ़ पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार, लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआर।

सेवा पवे सब थाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याइए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याइए।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए, सबद ना चीने सदा दुख हर दरगे।

आसा सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद एनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद। वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुख हर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना।

आए, लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए। असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक जो

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए।

गुरु बिन भगत ना होए, बिन गुरु भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुरु नींद ना आवे दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए। हौ हौ करती जग फिरी ना तन संपै नाल, अंधी नाम ना चेतई सब बाधी जमकाल, सतगुर मिले।

देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पाइन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया।

ना बिछड़ जाए। जो किछ करना सो कर रहा, अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी।

गोविंद गुणी निदान है, अंत ना पाया जाए। कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए। सतगुर मिले है, सद पै रचै, आप बसे मन आए। पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

कृपा करे, गुर पाइए हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगह मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुरु पाईए विच्चों आप गवाए, आम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वसे।

पुरुख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार मन मेरे सदा।

दरबार। सतगुरु पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम संभाल तू गुर कहे ते अपार। श्री राग महला तीजा, किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाईए।

माया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौं मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौं मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौं तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौं तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत।

मन तन शीतल सात स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए।

नाम ते आये विण कर्मा पाया न जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिस आए अंधन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुण सार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हों मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द न करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख ले महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोय रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किस आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमावे।

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो में जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हौं तिस विटों चौखनी है मैं नाम करे परगास, मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ आए, रहाओ नाम अमोलक रतन है।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अतपला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवाह ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिन सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए।

फुरमायसी वरते हुए अफार, करता चितना आवई मनमुख अंधगवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक। किसी चित न पावही।

शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बाद साया विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद साधक दर खरिया गिरंबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कु पकड़े।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

अपनाओ आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साफ संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडिआइयां।

उपाव स्यानप सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार इस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन

जियो पिंड सब तिसका, ज्योतिष पावे सो होए, गुरपुर पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए,

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब रहे।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतरजामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख उजने साचे के गुण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए आई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए

हिरै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याये मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जा की दात, सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार, सर्व कला कर था पिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी अंतर रख उधार, मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय। रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कितै न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल सतगुर के उपदेश है।

करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा भरपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ। सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार, नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए, मन मेरे साचा सेव जिचर सास। बिन सच्चे सब कूड है अंते होए विनाश रहाओ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेयरण सौ सेव तू सौरण सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सौरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहा।

उड़ सकल सियान पास साठ शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ व्यापे गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधार है पाप सगले जाहे। हों तिनके बलिहारण जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे एह करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिस है सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया।

ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरुष सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला। गत अविगत कछ नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा कर सतवा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, पूले चूके बालक तू हर पिता माया।

वंदन मुकुट संतो मेरी राखे ममता। पै कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना, गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाना। श्री राग महला पंजवा कर पहला, संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल। सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हों तुद विटो कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारने तुस दिता अमृत नाम। रहाओ जिन तू सेविया पाओ कर सही पुरख सुजान, तिना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान। गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाए, सच्चे सेती रतिया दरगह बैसन जाए। करते हथ वडियाइया पूरब लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीव है एक। श्री राग महला पंजवा, गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसे पूरन हो वै काल। रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवन अवर न कोय। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा, संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए। गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम, आगे दरगह मनिए।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अन दिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुरजेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया से ही नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

देश रसीद, बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले, अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे। सबना वेखे नजर कर जय पावे तें दे, थावा नाम ना जानी है नावा केवड़ नाओ। जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड़ है थाओ। अंबड़ कोई ना सकई हों किसको पुछन जाओ, वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे। वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे, हुक्म सवारे आपने चसा ना तिल करे। सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार, केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तक।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कं

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मन महत तू, आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू, शब्द लंगावन हार, निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार, अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए, गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक, तितन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक, नजर करे सच पाई है बिन नावे क्या साक, जिन्नी सच पछाणिया।

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, बिन अब शब्द ना मांझिए साचे ते सच होए, मुंदे गुणहीनी सुख के पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने रहाओ, पिर परदेसी जेती है तन वांडी चूरे, ज्यों जल थोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे, फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल, सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, काम काम ना आवे खोटी अवगण यार, ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार, आवण

सोए, नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला। जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास, पुन दान चंगियाइया बिन साचे क्या तास। जेहारा दे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश। मुंदे गुणदासी सुख होए, अवगण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए। रहाओ विण राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार। विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चले कारज सार, वन जा रहा स्यों वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अप

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ।

राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सो

देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

तिस बिन कड़ी ना जीवऊ, बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे, टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला, चेले नाही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाये, बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना, ज्यो सुनजे कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी, ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए, जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाइए, निर्बाणी पगनीत। हों गुर पूछो आपने, गुर पुछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसे, हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा, साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले, तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा, हर राखे उर्धार। सो क्यों मनो विसारिये, सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वार। शब्द ही ते पाये, हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको, वढ़ो वडेरी होए। गुर बिन आप ना चीनिए, कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए, हो मैं करे न कोए। श्री राम महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए, जोबन बाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी, बिन फिर बात सिगार। दुख कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए। शब्द मिले रंग होए रहाओ। गुर सेवा सुख पाइए, हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी, गूड़ा हे प्यार। गुरमुख जान सियाणिए, गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी, फिर मोही रंग लाए। मन तन साच विकसिया, कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी, निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे, ता फिर रावे नार। इकत तागे रल मिले, गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे, गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाने रव रहे, ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए, कथन ना पाया जाए। व्यापारी बन जा रहा।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब।

दिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

आवतन आपे खवे दुध को खपन न दे आपे मेल विछनिया सच वडियाई दे रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी चकवी सूर चिन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सोए ताकी कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ

जग सज्या लभ लोभ अहंकार मोह ठगौली हौ मुई सावरते संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख जोगी से सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आके केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वधाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साकी करिए शब्द विदास

जिन तन मन साज सुधारिया तिस प्रीति निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट गत करी।

सबको ऊंचा आखी है नीच ना भूसे कोई। एक ने पांडे साजे है एक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाई है थोर बस ना मेटे कोई। साधु मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउगल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया। जिस क्यों राता कैसो हो गए सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उधार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कहे तहाए दिन गुर आप ना जाए।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुमाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुक्म ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहणे गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवा।

बिन गुरु मुक्त न पाए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द है परम न चूके ना विच्चों हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द है थाए न पाए। शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वत्सल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्द हरसा लाहिये कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए।

न मिलते पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ अंदर नाम बखाने। एको पड़े एको नाम बूझे दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागे आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़वा

जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्थी आप गवाई, चलना सतगुर भाए। सत बलिहारी गुर अपने विटो, जे हर सेती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर सेती रंग राता। प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर, गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले।

शब्द ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विदारिया सत करनाई पाए सहजे हर नाम मन वसिया सच्ची कार कमाए सिर वडपाजी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहज ना उपजे माया दूजे भाए मन मुख कर्म कमावणे।

शब्द अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार। पूरे शब्द सलाहिए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए। मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई जो राखे त्यों रहना। गुर के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना। वड्डे पाग नाव पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लक्ष्यो राशि फिर आवे दिशा जन्म गवाया। पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसे मन आए।

ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कद सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस

उचरे तपे तपीशर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उत

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुद खुआया पर ताप लगा दोहाजनी पाग जिना के ना हो जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै आपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया।

नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विचों ए करन चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्त।

सतगुरु मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम वखानिए, सतगुरु बाज न पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। ओं सतगुरु विट्टो कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ

तिस जेवड अवर न कोई दियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छड़ा अम अब्बे थावो मिचड़ा पैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई दियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोहल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै काणे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सामे तिहंडिया पंज किरसान मुजेरे मेहंडिया कन कोई कद न हंगई नानक बुठा कुग।

मन चिंदी सो फल पाईंदा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं सदिया सबो तंगड़ा दोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समझ वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तरके हर।

لگا پائے جیو سن گلاں گر تے آیا نامدان اس نام دڑایا

हुकम पया दरबास उर्द तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आ

जिन रच रचिया तिसे न जाने, मन भीतर तर ज्ञान, कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान। तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, तन जोबन स्यो चित, हर का नाम न चित ही बन जा रहा मित्रा, बद्दा छुटे जित। हर का नाम न चेते प्राणी, विकल पया संग माया, तन स्यो रता जोबन मता, अहला जन्म गवाया। कर्म से की वापार ना की तो, कर्म ना की तो मित, कहो नानक की जय पहरे प्राणी, तन जोबन स्यों चित। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, लावी आया खेत, जां जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा, किसे न मिलिया पेत, पेत चेत हर किसे न मिलियो, जां जम पकड़ चलाया, झूठा रुदन हुआ दो आले, खिन में पया पराया। साई वक्त प्राप्त होई, जिस्यों लाया हेत, कौन नानक प्राणी।

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तार।

जोबन कटै जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए। अंशकाल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किस ना।

मुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। हर राम राम मेरे बाबूला, फिर मिल तन वे।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा पे टैवड पागी आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर ने चल मल्ली। हर दर सेवे अलख अपेरे नेचल आसन पाया। तै जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया। चित्रगुप्त का ताग दफारिया जमदूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी इच्छ सगली पुनिया। पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया मन उपजिया दिशासो। नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना। हर पी अघाने अमृत बाने सर्व सुखा मन बुठे। श्री तर पाए मंगल गाए इच्छ पुनी सतगुर तुठे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्व सुखा कर दीना। नानक सिख संत समझाए हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के छंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दखना।

मन बासत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाप के नाथे सर्व कैसा थे जप जुए जन्म ना।

हर त्या वो सांस गिरास मन प्रीत लगी इतना गुरमुखा हर नाम जिना रह रास रहाओ।

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसवा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अस पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाये हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न टूटसने हो कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्री

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख न पुल इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मुह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुवाए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिलै सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाए जम का पाथा गलो न कटी है फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नाम सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सत नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना।

अपछाने सावत राखे इकत करियाने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सत समावै सोए। महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हुआ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही तिन ऐसे उठे मुख

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियो।

सब रति सुहागणी सतगुर के पाए प्यार सदा रावे फिर अपना सच्चे प्रेम प्यार अत सुआलियो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सुहागणी मेली मेलनहार पौड़ी हर तेरी सब करे उसकत जिन फाफे काढ़िया हर तुदनो करे सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया हर निमाणिया तू मान हर डाडी हूँ तू डाडिया हर अंकारिया मार निवाए मन मुख मूड साध्या हर पगता दे वड्याई गरीब अनाथिया श्लोक महला तीजा सतगुर के पाने जो चले तिस वड्याई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार मन मुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौ जल संसार सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार पौड़ी हर की पगता प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो पगतो।

एक स्वान कह कर गावना, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तै जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनिक अनिक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सप तहना परवेसं, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एओ मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना

तर कैसा, कणक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जय जमते स्वामी, शरीर अरा दे मोको विचार देवू, रविदास समदल।

हर हर नाम में हर मन भाया, वड पागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया।

था। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्व जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुन।

तिसके हौवारियां मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हौ सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौं कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन बीत मुरारे जियो हौं कोली हौं कोल कुमाई गुर सज्जन बीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंत अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रस

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

जित मैं सतगुरु मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल कड़िया, तन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत परम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो। अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमासे, नाउ नानक कीने भोगा जियो। माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो, करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई लखवरिया,

हुक्म रजाई, सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा, तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे, ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख अगले देखे, मन हर रस सबते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाए दुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुकत पै कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाईए, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा, निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पै पुनीता, सगल उधारे पाई नीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेट तो हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पर्दा जियो। माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संग राता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने,
जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौर जियो। माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सू का हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुर न होई है जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सबके मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद समालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाणा जियो। सुन

आए जियो सुख पया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर परे सर सुबर बिरसा कोई न जाए जियो दया तारी तिन सृजन हारे जी जंत सगले प्रत पारे मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अरादे मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ताबो के आकारा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीतला।

प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुरदर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधिक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

तू प्रीतम ठाकुर अतपारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कह, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

जो बार माता सम्हारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आए जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अखल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसुकी वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो। अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपक अघाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया।

सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

तेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तू त्याई जियो माज महला पंजवा सबे सुख परे प्रभ तुथे गुरपुरे के चरण

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद गुण गाये, बिसर न कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर, कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आसा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृह।

सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो, जा कै गृह नव निज हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो, खिन में था उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो, अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो, माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे था पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो, सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन जीठा जियो, तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू

जिन देखे सब उतरे तलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, बिन स्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सब सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं तर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

सेवा सुरत सबद चित लाए, हों मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया, गुरमती प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंदन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा।

ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਜੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਬਿਨ ਤਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੋਈ ਬੂਝੈ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਆਪ ਸੁਣੇ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇਖੈ, ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਲਕਣਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਵਡ ਪਾਗੀ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਪੇੜੇ ਧਨ ਅੰਦਿਨ ਸੁੱਤੀ, ਕੰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਗਣ ਮੁਕਤੀ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇੜੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੇ, ਸਤ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੋਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਰ ਬਿਖ ਕਾਰ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮਾਂਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਏ ਤੀਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਛੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਇਕਸ ਤਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਟ ਕਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਜਗ ਪੂਲਾ ਤੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਪੂਲਾ, ਦਿਨ ਨਾਵੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਈ, ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਇਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੋਆ ਜਾਪੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੈ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਡਾਏ, ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਫਿਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ।
देही जात ना आगे जाए। जिथे लेखा मंगिए तिथे छुटे सच कमाए, सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया। तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए, अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया। सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले, मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया। माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता, जिसे सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया। अप्यो पिए सो परम गवाए, गुर प्रसाद मुक्त गत पाए, भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया। आप उपाए संदे लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए, नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया। माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया, गुर के शब्द परख परखाया, जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया। हों वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया। रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा, गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया। मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया। वे परवाहो सच मेरा प्यारा, किलविख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे, आपे दे ना पछो तावे, सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया। हर तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुद है सेवी तै तुद सलाही, आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया। मैं होर न कोई तुद है जेहा, तेरी नदरी सीजस देहा, अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया। तुद जेवड मैं होर न कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कर पन सवार, नानक नाम सुहावणिया। माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा, अलख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया। हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया, शब्द सूजे ता मन स्यो लूजे मनसा मार समावणिया। रहाओ पंच दूत मोहे संसारा, मनमुख अंधे सुध ना सारा, गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया। एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते, सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया। एकम एक है आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सह समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया। सच्चे बाजो को अवर ना दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया। जी जंत सब शरण तुम्हारी, आपे तर देखें कच्ची पक्की सारी, अन दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया। तू आपे मेले वेखे हदूर, सब मैं आप रहा भरपूर, नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया। माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरमुख विरले किने चख दीठी, अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया। हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया, सतगुर है अमृत सर साचा, मन नावे मैल चुकावणिया। रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया, गुर प्रसाद किने विरले चित लाया, तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया। एको वेखा अवर न बिया,
गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर कै शब्द तिखाने वारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रह पै अंदर, तै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हौ वारी जियो वारी, निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल शब्द करावणिया। रहाओ मन मुख मुग्द करें चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हौ बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जै, गुर प्रसादी अंदर पीजे, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो में जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जियो सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सत्य शोभा पावणिया। बिन गुरु नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुरु सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहा, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वै सो इक क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए,
अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द है साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर सालाहे साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन में जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर से ती चित लावणिया, हर पच्चा गुर पगती पाये सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब कुछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंध गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ में ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर्धारे, सच रते सदा बैरागी हौ में मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पानी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करते एक खेल रचाया,
ਤਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਗੁਰ ਹੇਤ ਅਪਾਰੇ ਸੱਚ ਵਿਹਾ ਜੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਤ ਕਿਉ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਇਕ ਸੱਚ ਵਣੰਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰ ਪਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਤਿਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਕੁਲਾਵਣਿਆ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਸਬਦ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਆਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਈ ਹਰ ਚੇਤੋ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਨਾਥ ਅਜੂਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਏ ਪਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰਣਿਆ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਸਬਦੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਤੱਕੀਐ ਨਾਮ ਅਧਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਕਰੇ ਕਿਆ ਤਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਖਪ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਆਤਮ ਕਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਪਾਰ ਉਠਾਵੇ ਬਿਨ ਮਜੂਰੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ ਇਹੋ ਜਗ ਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ ਜੇਹੀ ਵਾਸਨਾ ਪਾਏ ਤੇਹੀ ਵਰਤੈ ਵਾਸੂ ਵਾਸ ਜਣਾਵਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿਸਰਿਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਦੁਖੀਏ ਨਿਤ ਫਿਰੈ ਬਿਲਾ ਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਂਤ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਤੇਹਾ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਣਿਆ ਤਿਸ ਬਾਜੋ ਸੱਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਕਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੇ ਪਰਖੇ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੇ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਖ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਰਤਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਵਣਿਆ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੋ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਵਣਿਆ ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਰ ਕੇਰੇ ਕਿਉ ਮਨ ਪੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਧ ਆਪ ਉਪਾਏ ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜਾਨੇ ਪਾਏ ਖੋਟੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਵਣਿਆ ਕਿਉ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਬਦ ਸਲਾਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਤੂੰ ਪਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਆਵਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੈ ਸਹਿ ਸੁਵਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਵਣਿਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਚਾਕ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਕੋ ਪਾਏ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਦਰੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਣੇਰੀ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਵਣਿਆ
गुरुमुख तत् है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी साई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल, निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पर पर था के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूर बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे पा

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्दे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे शोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोह सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसे मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कहे दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मल जाए सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर तप्त दुख पावणिया गुरुमुख भगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख भगत साए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत न पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुखदाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हों वारी जियो वारी सुख सह समाज लगावणिया जो हर सेवे से सदा सोहे शोभा सुरत सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावणिया गुरमति हर मन वसाया
हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निज नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यो मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

छू ना होए, तू काय कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारन तिना ठौर ना ठाओ, तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख बिहावणिया। लिख दिया कागद मस कोई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, होमे मैल लागी गुर सबदी खोवे, मन निर्मल अंदिन पगती राता, पगत करे हर पावणिया। हौ वारी जियो वारी, आप पगत करन अवरा पगत करावणिया, तिना पगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावणिया। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाए पगत जा हो में सोख है, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर सबदी आप मनावणिया। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हों में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्दे नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत बेगार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया,
गुरुमुख गावे, गुरुमुख नाचे।

आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

नाम निरंजन अंतर बसे मुरारे हर गुण गावे सबद सुहाए मेरे प्रीतम सुख पावनिया जम जागाती दूजे पाए कर लाए नामो पुल्ले देश जाए करी मोहत का लेखा लेवे रतियो मास

तो पंडित होई आसर सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया।

माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए, हर दर मैली सो बापावणिया। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत खास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी।

दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या, पेयड़े तन कम संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कै सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या, सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एक रव रहा कट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावण्या, सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चित न आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या, जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या, माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप

अवर न कोई गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लख्या नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

कौन सो बकता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन ने कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित पावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मंतन पा।

पैचाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

0: सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छबाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपार सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਕੰਸ ਨਾ ਤਗਤੇ ਪਥ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ।

अभिमानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाम न जिन्ना पाक असार तपंदा तिस लगे

पास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

जिन्हें सकिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार। नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार, सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत, लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत। छंड खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत, हाथ मरोड़े।

इच्छ पुनी वद पागिनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक सा

नानक जीवे जप हरी दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन।

दूजे माए बाप की सुध, तीजे पया पाबी देव, चौथे प्यार उपन्नी छेड़, पंजवे खान पीन की तात, छेवे कामना पुछे जात, सतवे संज किया परवास, अठवे क्रोध हुआ तन नास।

का कवलहार पौरी, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग तरंग उपार्जना बहु बहुविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

तेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हर्षों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणित गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। पूर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पर नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिवा।

आए गली पिस न जाइए छुटे सच कमाए मारन पाए हराम में होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए। महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाओ पहला सच हलाल।

कहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर पड़े पंडार रीते इक खने ताजी रथ सुखार हाथी पाथरे बाग मिलक कर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दा तार सिनाकत कुदरती। श्लोक महला पहला। नदियां होवे तीनवा सुम होवे दुध कियो सगली तरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। तार अठारह मेवा होवे गरुड़ा होए सुआ

क्या सोए, क्या मेवा, क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मन

पेदा गंद बोले सच कोए, मोया गंद ने की सत होए, एक गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम तिहाई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नाम है सब विश्व जय खाई है सच्चा सबर सलाह सच समाई है।

नदर शराब की बहुर ना पाई ताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोल

जी गया सब सवार आस अमृत पी गया। श्लोक महला पहला। मारू मी ना तृप्तिया अग्नि लह न पुख, राजा राज ना तृप्तिया सायर परे सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा। निफलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते, सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के, करण कारण समरथ है कहो नानक विचार, कारण करते वश है जिन कल रखी तार, पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसया, सच्चा खसम कलान कमल विकसया, खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसया, सच्चा शब्द विचार काल विदुषया, ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। श्लोक महला पहला। खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे, तोते मूल ना उतरे जेसो तोन पाहे, नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख, जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी, चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया, उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया, सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया, पाया रतन कराहो दीवा बालिया, सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया, निदरिया डर लग गर्व से गालिया, नावो पुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा। पैर च जमे पै मरे पी पो मन में होए, नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा। पैविन जीव है बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए, नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए। पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा, सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला। सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई, फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही, पेड़ा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई, माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोमन ताही, ओना पिंड ना पत्ता।

नानक सिर्फ उठे सैतानी इना गल न पानी वुठे हुए होए बिलावले जिया जुगत समानी वुठे अन कमाद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहु चरे नित सुरही सातन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पे कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वजाई नानक जे सिर्फ उत्ते।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समयो, तिन

सिर पर चलिए सहिए पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पौ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, इस विच भूख बहुत ने।

तू सबना का सोए, जाके जी जंत तन माल, नानक आखण दुखम विचार। गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख,

खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार गुजरे ज्ञानी यो विचार कत्ता बक्ता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव देही माटी बोले कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद अंकार ओ नाम हुआ जो देखन हार जय कारण पट तीरथ जाही रतन पदार्थ पट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने पीकर हो दी वत्स न जाने हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए ओह नाम हुआ जो रहा समाए कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर नाया गौड़ी मेला पहला दखनी सो सुन गूजे माने नाओ ताके सब बलिहारे जाओ आप पुलाए ठौर न ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ नाम मिले चले।

संजोगी गर दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां पे आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल ठाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन।

जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर कर ते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विसार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुगदा पागे, कमल विगास मन हर प्रभाव।

गए हुए ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू एवड़ दाता देवन हार, तोत नाही।

जो पावी त्यों नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सत शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई दौड़ी महला पहला जिन अतख कहाया अपियो पी आया हम सह विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सह सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत पास्त पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कै हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी इहो संसारो, लग लोभ मुक्त।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

पूजा मेवा में सब किछ चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। दे दे नीव दीवाल उसारी, पस मंदर की तेरी, संचे संच ना देई किसी, अंध जाने सब मेरी। सोइन लंका सोइन माड़ी, संपे किसे न केरी, सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना। रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना, आगे जम दल विखम कना। रहाओ उसार मरोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सातना। अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मरोली लूटिया देहोरा, सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा

कट पीतर मुंदरा काया की जय खिन खाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुंडाये जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत समझाता पर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चितलावे लभ लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी का प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी का गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको साहिब।

केते पंख उड़ाए। हटपटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हटपटन बाजारा लेके तकड़ी।

करे अंत न चाहे आ जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पाग चु होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे गौड़ी बैरागुण मेला पहला हरणी होवा बन बसा संग मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज सबक विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौवत है हो मिलोंगी बाप पार नागन होवा तरवसा शब्द वसै कौ जाए नानक सदा सुहा।

अंत न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब पार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ कमाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जाते, सब किस साचा आपे आते। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सोखाए, रहाओ जलो ए जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, इक गावत रहे मन साधना पाए, हौ मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक गावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वचल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बक्से नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे देव डियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाने गौरी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हो मैं मार गुर शब्द पछाता।

जित सेवे दर्ग है पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस युग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आप करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म न कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे परवाहो सच्चे मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पर जल उतरो पार रहाओ करमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रत आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरथा जंगवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नौ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मनपति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल साए पाई गुरुमुख सेवा हर काल साए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर शब्दी होए गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें हर

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ज्ञान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मजे पानी नाही, जैसे धरती मजे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए कै क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जाता कारज सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हस आवे जाए, गुर का शब्द न कीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, पेव कड़े गुण सुन ले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान इयाने, सतगुरु सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो

मतमलीन प्रगट पई जतमा मुरारा शिव सकत मिटाया चूका दियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनो जिस देखो जीवा हर दिन चसौना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहा हर हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गतकीनी हर रस गुर के पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन चावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन दे हो हर आस

त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिबसै देखै माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए पूरा कछ पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत।

सतगुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम।

हर बोलत सब पाप लह जाए। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूर त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रया बनवारी, हर आपे तप

हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विखे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी तुल

चौथा साहो हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हमने हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साहु।

हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर।

नित दिन सरात लालच करे, पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया, जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया, मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समाये रहाओ, नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया, कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया, तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया, नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई, जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए, जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए, जितनी भूख अन रस साद है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे, जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख ना लागे, गौड़ी बैरागन महला चौथा, हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा, मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ, हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस ला।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह लै बोले गुण विहून।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालकी राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काकी के किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले चढ़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए मन की दुविधा बिरस जाए। हर परम पद

आओ कर कृपा हर मेले आ मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु कह मोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर

पुरुष विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर कृपाते।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है। स्वामी कौ किथे हर पहु नसी है, हर आपे बस ले प्रभु साचा। हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है। सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है। रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना। कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम। लैलाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे। ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे। ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया। मन तिनके निकट न पिटी है, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर। जित सेवे है लेखा छुटी है, जन नानक हर प्रभु पूरे किए। खिन मासा तोल न कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन तन लोच कनेरी। राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी। गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभु मेरी। रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी। अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। अंदिन अनद पयावड पागी, सब आस पुजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए, हर राखो पैज जन केरी।

जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सातक हर रस साध ना जाने तिन अंतर हो मैं।

अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम

राम हर कीर्तन गुर लिर मीठा, राम हर कीर्तन गुर लिर मीठा, रहाओ हर अगम अगोचर।

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दृढ़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट पट रमैया रमत राम राये गुर शब्द गुरु लिव लागे हों मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

आया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर निवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर

रम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा वड पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग तिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया।

करी हाजियो, मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो, हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनद्रैस जियो हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासिया।

तेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख बिहानी रहनी जियो, मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

हर क्रम मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा, आपे सतगुरु जोगी जियो, आपे जगत उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आप खेल बहुरंगी जियो, इकना भोग पुगा।

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरुमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम।

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुनि वाजियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई है हर राम सहाई रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया ऊंचे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख विगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी हूं मैं के फासा राज कमावे दहग सारी माने रंग पोग बहुनारी जो नरपत सुपने पे खारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई है हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा क्यों प्रमी है प्रम किसका होई जा जल थल मैयल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखे आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब में वर्ते एक अनंता ताकू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किछ जान।

छाप कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहरते आई रमैया रेन

चाहे हो, गुरु उपदेश मने महले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत पय सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

ला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवावे, हर हर नाम जा के हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने होए बैस

कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक हुए।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद्य जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक है जाल पहाए पंखी, रस रस भोग करे बहुरंगी। कहो नानक जिस पै कृपाल, गुरपुरे ताके काटे।

जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी।

हर गुण गावत रसन अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेड़े, ए रस राती बोर न छोड़े, आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुर पे हैं सहाय, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो।

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का।

पंजवा व्यापक हरख सोग विस्थार व्यापक सुर्ग नरक अवतार व्यापक तन मिर तन पेख शोभा मूल व्यादि व्यापस लोभा माया व्यापक।

व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

कर व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत इह जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन

आओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग ना

अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी, जब के सुनिया हर जस्तानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखन हार रख ले निदान, दुख दर्द बिन से तै परम, आवन जान रखे कर कर्म, तिथे बोले सुने सब आप,

है और ब्रह्म परमेश्वर क्या है गुरु पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वैसा हो, गुरु पूरे रथ दे हाथ, नानक पार ब्रह्म सम्राट, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, गुरु प्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, अमृत गुण उचरे प्रभ वाणी, पूरे गुरु की सुमत प्राणी, प्रभ सिमरत कुशल सब पाए, कर बाहर सुख सह सबाए, रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया, कर कृपा प्रभ आप मिलाया, बाँ पकड़ लीनो कर अपना, हर हर कथा सदा जप जपना, मंत्र तंत्र औखद पुनः चार, हर हर नाम जी प्राण आधार, साचा तन पायो हर रंग, दुतर करे साध के संग, सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर तन खटियो जाका नहीं सुमार, जिसे प्राप्त किस गुर दे, नानक बिरथा कोई नहे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, हस्त पुनीत

माया मगन ना कछु मोह है, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के संकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस बल।

हट कर जाती। सत होवन मन लगे न राखी, बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोहा सुरिया का खसा।

किरत संयोग सत्य उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हाथ जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संयम प्रिय आज्ञा माने, इस नारी को दुख न जमाने। कौन नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, हम तनवंत।

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा

तै सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक।

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रब जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत सदा

से कर तब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत, रहाओ मीत हमारा वे परवाह, गुर कृपा के मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समरथ पुरुष पार ब्रह्म स्वामी, हम दासे तुम ठाकुर मेरे।

कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

पूर्ण राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहू नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाता पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जा का मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम के आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे, हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे, मन तन मुख हर।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरु पूरा पेटियां लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

ते बुलाए गुर का शब्द तेरे संग सहाई दयाल पै सगले जी पाई गुर पूरे जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजवा अनुग्रसा खाए जैसे तोर मोह की जेवरी बांधियो चोर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ अनेक बस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माह डराया सगल शरीर आव सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कवल हृदय अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी मैला पंजवा गुरु का शब्द रास मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे दिन भगवंत नाही अनकोए मारे राखे को सोए रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार अगन सागर जब उतरे पार गुरु मूरख्यो लाए ध्यान ईहा ऊहा पावे मान सगल त्याग गुर शरणी आया मिटे अंधेसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसे मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अक्षर मन में लेख रव रया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा पै में रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभु पाना अगन सागर महा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से भ्रम तो पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सगल कथा के अंतर

अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग दे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही।

दात नानक नाम जपै दिन रात गौरी महला पंजवा तू समरथ तू है मेरा स्वामी।

जो कुछ वर्ते सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकी

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पंजवा, हर सिमरत ते जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नदर करे गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस

नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ। साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती। कर कृपा प्रभ बंदन छोटे, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की है जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा। दुख दर्द प्रमता

सांस आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास साध संग खाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस की वो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किलबिख सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृद माहे बताई, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान।

खादा पहनदा मुँह कर पाए। किसनो जो है दूत धर्म राय, किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ। साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया। बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी शरणाए, बंधन काट करे हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोग को की नोमीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाय हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार तब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वजाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

0: कर कृपा प्रभु लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभु सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभु खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख न होए, प्रेम भगत पद गुणी निधान, नानक दरगे पाये मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास, सगल दुख का होया नाश, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभु राखे देहात। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विखनते, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो बिक संसार, कर कृपा प्रभु कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कै पंजन प्रभु मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही। रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग। रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेक जीवे प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे, सोवड पागी निचल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा,
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, काट काट अप

चोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

साज तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आई है गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांस पई

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई द्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम।

आगे आप क्यों थान वस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं। पप प्रवान सत निशान जा तो आप करें फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए पजो।

अस्थिर पर बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम।

नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के।

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लिहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन नीत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत में।

मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोह सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरुष रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गौड़ी महला पंजवा, निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण दहो।

हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिल रहनी है कोई संत मिलावे नेरा। रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनित पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जाप बहोरा। अनद सुख पेत

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख ना जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो।

सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एक ठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौ निज नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैथे जायो। एक कनक अनक पांच साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्ते तत मिलायो। गौरी महला पंजवा औद कट

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंक बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोह तुमते तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बकता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा। जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप्रम

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

आ रहा हो, अंतर की विद तुम ही जाने, तुम ही सदम सुहेले। सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले, वरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। परम पो काट किए ने केवल जब के

कृपा के मानस देह पाई है, देहो दर्श हर राया, सोई होआ जो कुछ पाना, और ना किन्ही कीता, तुमरे पाने परम मोह मोया, जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निज दयाला।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिसे सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर के मोको सतगुर शब्द बुझायो।

इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपूता पंख एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जय कहो नाही ता आसन बांधे हो सिंगी अनहत बानी पथ विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक परदासा।

श्रृंगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त।

इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

मेरे हर भगत बिना जीत जन्म ओ रतन अमोलक साध संगत जप इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ दे बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर के तत परम पो खोया कहो नानक।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच दिखा दिया, गुर कृपा ते दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक ना।

पीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर के आये।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही, हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जाती है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन के, नानक को प्रभु।

तू गुर प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

साध संगत मिल हर रवे हैं। से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध। जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा, खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

आओ अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रह रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अद थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाज मिलत सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिया रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाये, जो होए दयाल सतगुर अपना, ता ए मत बुद पाये, मेरे मन नाम ले जम बंते छूटे, सर्व सुखा सुख पाये, शेर स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आये।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह बिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुंड नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवे दुख में पंथ पयान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है काल। कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल। होम जग तीरथ किए बुझ हो में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना हो।

करे। हर्ष सोग हान मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले। राव जौ लो हो कि सोचो चितवो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। कोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरु मिल त्याग्यो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो। निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो। जो किछ करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पय बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तू।

किछ इन्हें कमानो जब तब कछु न सादा। दै दिस लै एहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा। मन तन तन भूम का ठाकुर हों इसका एहो मेरा। परम मोह कछु जस नाही ए तैखर पे पैरा। तब एहो कहां कमावन परया जब एहो कछु ना होता। जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता। अपने कर्तव्य आपे जाने जिन

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाखर ओ सजली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

पतित पवित्र लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो।

पाया सब दुख मिटाया जियो, हाथ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

अंतर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल जह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कथन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी मैला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यो, ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग, देखता उठतावे, भुगत मुक्त का

जन नानक हर पै दयाला तो संविद बन आए गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ राव पतित पुनीत दीन बंद हर शरण ताए तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो तज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरुमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नामा को माई पूलियो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों निहो न लावे नानक मुक्त ताही तुम मानो जिन कट राम समावे गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोग मोह माया ममता सुन अविकियन की सेवा हर्ष सोग परत है जे नाहिन तो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा उत्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा एनस औद कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी इन में कट से रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तैहारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गा

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पै सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उलट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म।

सोए कृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन में साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज खाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे ता बूझे नाओ माया मोह सर्व जंजाला मन मुख कुचील कुछ तेज कराला सतगुर सेवे चूके जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझे एक लीलाए निज कर वासे साज समाए जमन मरना ठाक रहाए पूरे गुर के ए मत पाए कथनी कथो ना आवे और गुर पुछ देखिया ना ही दर होर दुख सुख पाने तिसै रजाए नानक नीच कह लिलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार विनाश।

करण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सब एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख से आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलक अपेवा, जय जय देखो तैसे साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीन है सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुगद अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट में खासा, हरनाकसले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरुमुख साच पढ़त निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इस तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवर

पहला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्याग है कवरे पाय मिले सत साचे फसरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा राज तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी तत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर तृपत ना कभू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बो नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृप्ताता गौरी मैला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे।

जिसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, जिसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो जिसको जिसका इहो जियो, गुरु शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हो करत नहीं पत पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे, हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेकल कोई न

ओ गुरुमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी। बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए। काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौरी मैला पैला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई। रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है। गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी। मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सत जोत अपार। जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी। इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया। जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, बौड़ी महला पहला। राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार।

से प्रभु राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द पर सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, तो बूझे जो फत गुर पाए, हों में मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संद क्यों जाने, गुरुमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए हो मैं मैला यो संसारा नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हो मैं मारे गुर के शब्द पंच संगारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नट बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे अंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़ वाद वखाने सिर मारे जमकाला तत नाचीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम विसारिया बहु

भरम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुरु पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको सरी।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाई है नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे होमै मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख

मन करहला गुरु गोविंद समाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाले, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुरु पाले, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुरु चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मार।

अंतर निधान मन कर ले परम पवे बार पाल गुरपुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे ना उतरे गुरु सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड पागी गुर

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई तांते इस संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो ता

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर

जास जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने। जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द निरिद अंतर तारे। पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास। ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए। जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पे

जाके सहज मन पयानंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सत्कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरु दुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा। हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता ने चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे

नहीं मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सद

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दव की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी मैला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन त्यायो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, गुर के बचन जागिया।

जिन गुरमों को दीना जियो अपना दासरा आपे मुरलियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश पे परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मध जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिर्फ काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण त्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग रख

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया, रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया, चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया, मैं पायो सर्व निदान अकत कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया, जन नानक लगा रतन अमोल अपारिया।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दोते रहो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवां गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवां, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौं संचो हौं खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौं सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

मुंद रैन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सापन दुबलिया जियो पिर कह हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे नानक सातन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती। मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती। रैन दिन रस पिनिया नानक पिरता।

रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे, एक लड़ी कुर लाए नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हठ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोह खुआई कूड़ विगुती ता फिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए पासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर के शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सातन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों में मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सातन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर भर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काए पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर्धारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतम अति प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरुमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीवत्या यों

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई करे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची। विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो। आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना। आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे। हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

आज गवाए सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए नाम क्या है सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाई है आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोग लुवाए बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चुकलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्स निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख

बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध थाओ गवाया। अनहत वाजे वजह कर में फिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे जहाँ साध संत एकत्र हो गए तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुझ जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिनवंत नानक राज मिल चले पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आराधिये जम पंस बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल गिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान।

समर्थ स्वामी कट कट प्राण अधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समर्थ मोहन सर्व दोख विदारो रोग सोग सब दोख बिन से जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक इच्छ।

सुन सकिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रमुख होयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सत गुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

गीत साज रज राचे तंदे कहां ब्यापे ताहु जो एक छाद अनकते न जाहु जा कहिय दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान त्यान मन हथ मिलियो न कोए कहो नानक।

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूटी है।

अधमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर।

एकै आप अवर न हो, हो अनहार होत सद आया, ओ आपका अंत न काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर ते जपना। श्लोक। आत्म रस जे जान्या, हर रंग सहजे मान, नानक तन तन तन जन आए ते परवान। पौड़ी। आया सफलता को गनिए, जास रसन हर हर जस पनिए, आए बसे साधु कै संगे, अंदिन नाम त्यावे रंगे, आवत सो जल नामे राता, जाको दया मया विदाता, एकै आवन फिर जोन ना आया, नानक हर कै दर्श समाया। श्लोक। यास जपत मन होए आनंद, बिन से दूजा पाओ, दुख दर्द तिसना बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी। जैया जारो दुर्मत दो,

एक नाम ले मन परो। यैया जन्म नहारी है गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मार

उद्यान परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहीं सुमार। पौड़ी।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनब स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद न दुख न दानते।

लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहा बिसासा देखा बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी हूँ।

कूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुने चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर पगत कहां थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

काल से जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी आप दे।

सभागा चार कुंट देह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

पौड़ी। जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ, जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिर

लिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत। जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत। पौड़ी। निन्या जानो दृढ़ सही,

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा कै हा

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रह हों आवे जाए। टहत टहत अब

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

कौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पचित रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गमन, फतेह पई मन जीत, नानक गुर ते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी। फफा फिरत

तैं पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संग जे रिद बस्यो नानक ते ना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुतर महा बिखम ए माए गुरुमुख।

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख हुआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर हो

याहो तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रगटी।

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहज पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन मुठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभु।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैव स्टूडन जाए, देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे।

खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचार।

अरे अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वख्याना, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुखों।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

प्रभ के सिमरन दूख जन्म से, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, छे सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रधान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सह समानी, प्रभ के सिमरन नेचर आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण तर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर, अनिक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग हो जाति के लाते, हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघन जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सब बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है।

हर जस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमात हर जन के हर नाम निधान कार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत तस्माए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आप पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संगवद भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जात पात ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्याप है अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप है पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहनी सिजाय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जमदान है गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तो कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्पा

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

मारे आ, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोगन पोजन सुख सूद, बिर पया ऊपर साख सैन, मुख पियाओ बैठ को देन, त्यों निर्गुण गुण कछु न

जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जा की टहल पावे दगे मान किसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा यो फूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छदना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए किस पाश्रम करे संग सहाय किस पहारे चंदन ले पुतारे धोए गर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूफ में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मलमाया छपस नाय कछ करे छिपाया।

था जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कै तो समझे पोरा कहां विषण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अन

संस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस किस आगे राखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।

करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

आए। गोविंद भजन दिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का वी जय।

प्रभुता के जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग।

साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा। साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

अब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी।

अरे अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाखर बिरख मिट

छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

अखार, अनेक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख कोस तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए।

अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है,

नानक संत पावे तो ले मिलाए। संत का दोखी अद बीच से टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे। संत के दोखी तो उद्यान बरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत का दोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाए। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ताले उबार। संत का दोखी यूं बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे। संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुएला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछ वरते तुसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय। अष्टपदी। मानुक की टेक बिरथि सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह

बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़पा गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत की ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन में न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहे ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन।

मार जिस गुर पर साल तू टहो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दी पत्तर गास गुरु दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिललाये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख पर देवन हार अवर त्याग तू तिस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नाम का कह सब बलिहार है चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाइये साध संहर कीर्तन गाइये अनेक विघन पे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ने पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किस का ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी पर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सचा की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी।

पार्थमिता में अवश्य आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाव। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह श्यान लया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम कपियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याध मन से खैनते जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दश्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल उदमे उधार करन कारण सो प्रभ संगरत दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान।
मंत्र गो दोहर कह नाए दैव स्थावत आवे ठाए ता को बिघन ना लागे कोए जा कह हृदय बसै हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर स्मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कह मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्यास अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राशक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए नानक की प्रभु बेनती अपनी पगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपज

ही आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे, गुरपुरे सत्य है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन के आया। साजन संत करो ओ काम, आम त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जाप पाए विश्राम, सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेक दर सुख होए, मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजे कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संत दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हित, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमित हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी जब अकारते हो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन न जापत तब हरक शोक कोप से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकत को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभु होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे पूप कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाहि कुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद कते पा कोची।

बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बख्यान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों ना।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कहे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात विस्तावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे ले समाए। कुंते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तत्का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येक खोनेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मंगते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक दौर न आवे जाए। किसते दूर कहा को जाए, उभरे राखन हार ध्याए। निरपौ जपे सकल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट। चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिसते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाई है गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास।
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार सब जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए, कौन निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर वो ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर करो, हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। केम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद।

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

आप तजो गोविंद पजो पाओ भगत प्रवेश। लाभ मिले तो ताहिरे हर दर गए पतवंत, राम नाम तन संचवे साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक। तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय, नानक संत निर्मल पये जिन मन वसया सोए। पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

तस बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी। खष्टम खट शास्त्र कहे सिमरत कथे अनेक, उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख। नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोविंद, रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिन सियो पाई शरण दयाल, चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए, खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक। संत मंडल हर जस

आए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभु निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभु।

वैकुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसे दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरुमुख ब्रह्म।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का।

मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उदार। किलबिख का तय होई निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार सब कार्य तिनके सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुरसावास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वय।

ना कोई सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी। जिस साहिब पावे तिस बख्श ले सो साहिब मन पानी। जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है निरपौ निर्वैर निरंकार। जिन जपया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश। विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास। जन नानक नाम त्याए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे। जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे। कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तरम है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलक पलक मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चित में नित तेहा पाए।

करे कनेरियां, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अंकार न विचों जाए, अंकारियां नो दुख पुख है, हाथ तड्डे कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए, ज्यों लोहा पारस पेटी है, मिर संगत सुवरन होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यों पावे तिवे चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए, गुण की साध तिन स्यों करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम ते आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नामे ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुँह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जा हर हर नाम से आवे, हर बाता आख सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उस दा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते, उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया, जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आप सुनाए, पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया, पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है, सो ले जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईदा, सच सच्चा सतगुर इके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वश के, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे न पावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभु का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया, गुरमुख बस जमायन, मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने पले नो, हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसानी जमी पाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम अरादिया, आप तरिया सब जगत कराया। महला चौथा। सारा दिन लालच अटिया, मन मुख होरे गल्ला, राती ऊंगे दबिया नवे, सोत सब चिल्ला, मन मुखा दे सिर जोरा, अमर है नित देवे पला, जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे, से अपवित अमेद खला, काम व्यापे कसुद नर, से जोरा पुछ चला, सतगुर के आखिया जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज लें गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नामे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ तोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए।

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठ है रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे।

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी इक मन इक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जा गुर कह उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लदो वारे ओए अगे पिछे बह मोछ पाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूड़ लैन पे डारे जे साकत न रखावाये लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगें गवे जन नानक बोल।

नित उठ समालेन। महला चौथा, सत गुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ़ ले हर दात करे दातार। तन तन से सा है जे नाम करें व्यापार, वन जारे सिख आव।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सबदू वड्डा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नु सा

मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़, विष्ट

बहु रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिव लाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योतिष पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा जो जी अंदर वरते तू करता आप अगणत है सब जग विच गणते सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनते तू कट कट एक वरतदा सच साहिब चलते सतगुरु नो मिले सो हर मिले नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाई है चित क्यों सास गिरास विसारी है बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई इहो जीड़ा हर प्रभु वस ज्यों पावे त्यों।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, उथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वर्त।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवा अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदर।

था। मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अंकार, झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार, शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार, दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार, नानक मन मुख

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊण न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

छोड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तो साधिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जा

छोड़ी। ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने, जम के पंख न पाए फिर ना ही मरने, जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने, बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने, पेक दर्शन नानक जीविया मन अंदर तरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास, नानक नाम आराध्य कारज आवे रास। महला पंजवा। जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए।

इस पेट तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई, फिर बहुड़ ना मरिए, पाव सागर संसार बिख सो पार उतरिए, हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

लोथियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हो।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृतको इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम त्यावो, कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पोरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकर दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

मोती, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कूटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मरे संत सब जीवे राम रसायन रसना पीवे कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखो कबीर दद कै पोले बिरोले नीर रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हाथे ही गै मरे माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरे रसा तल पाए कहो कबीर प्रगट पई खेड ले ले को चूगे नित पेड राम रमत मत प्रगति आई कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूरब जन्म हो तप का ही ना अब कहो राम कवन गत मोरी सजीले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत वर्ष तप किया काशी मरन पया मगहर की बासी काशी मगहर संबिचारी ओछी पगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गज शिव सब को जाने मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा इस तन तन की कवन बढ़ाई तरन परे उर्वार न जाई रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम एक खिन लेहे ना हर को नाम हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर मरती बार कस बांध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रमत सुख पावे कृपा करके नाम दृढ़ाई हर हर बात सुगंध बसाई।

हार दुखे। जमते उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सुजन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी अका

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

जागे, केतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो हुए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना।

तो सम्राट निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग

कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छ।

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे।

कोई कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौरी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्मा

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अम

स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कहो शीस बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

सतगुरु ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इक

लागत पवन खसम बिसरायो, जीरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन में उर्द तप करता, पौ जठर अगर मैं रहता, लख चौरासी जोन प्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पज

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों

साता पूर्ण पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डर पे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मर...

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

ता बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मने बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवायो।